बारी सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दोते लो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुम हरे तब ते कौआ तरे नी आने राम री पुराण कुरान ने कह मत एक ना माने आओ सिमरत शास्त्र बेसब है बहु भेद गा मेघ न जाने आओ श्री हसपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो बखाने।

गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद क्याओ अंकार। सात गुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहज सेती। मन वजियां वधाइया, राह रतन परवार परिया। शब्द गावणे आईया, शब्द ओतां गावो हरि केरा। मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे। दूसा विसारना, अंगीकार हो करे तेरा। कर सब सवारना, सबना गलां सम्राट स्वामी। सो गो मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे। कर ता तेरे सब किछ है, जे दे सो पावे। सदा सिसला तेरी, ना मन वसावे। नाम जिन कह मन वसया, वाजे शब्द घनेरे। कहे नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया, कर शां सुख मन आए वसया। जिन शां सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो। जे दिया वड़ियाईया, कहे नानक सुनो संतो। शब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पन शब्द कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे। कला जित कर तारिया, पंज दो तुद वस कीते। काल कंठक मारिया, तुर करम पाया तुझ को। से नाम हर के लागे, कहे दान तै सुख।

सासंतो विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पूंजे तिसका हो अधारो ए वस्त ही न जाई नेतन ठाकुर तारो तम संसार चल लगत रिया सब नान ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाई मैनो जो कितो मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पिया मैं राम तोई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीव हरिया तरस पिया मैं राम तोई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीव हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शामा दे दीवान की रंभता विच नेतनेम की बाणी सोदड़ा सब दे पाठ होए ने आप ने शरदा नाल श्रवण किए ने थोड़ा जा समय करके थोड़ा जा तेज करना पिया खिमां दा जा चुका गुरु कृपा करे सब नू चढ़दियां गलावां अज तीन परिवारों वालों गुरु के चरण प्रसन्न किए जा रहे हैं बीबी भाई सुरजीत सिंह दर्शन कौर राणा परिवार वालों बच्ची परनीत कौर राणू परिवार उन्होंने अनादकाज की खुशी विच गुरविंदर सिंह बलविंदर गुर ढिलों सतगुर ने पोते की दात बख्शिश की है काका केर सिंह का जन्म होया इस तरह चिराग परा नागपाल परिवार वालों भी प्रोग्राम ने सुखमणी साहब के पाठ आरंभ हो रहे हैं और तकरीबन 7:45 अरदास होएगी। सब परिवारों को बेनती है कि बैठ के आप क्योंकि सुखमणी दास साहब का पाठ परिवारों लिए है परिवारों को बेनती बैठ के बड़े प्यार नाल पाठ श्रवण करो जी ठीक 7:45 असी अरदास करांगे उस विच आप सब नू बेनती कि आप सब ने हाजरियां भरनियां आओ सुखमणी साहब के पाठ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रभु को सिमरह से बे मोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा विनाशे, सिमरनते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरह से परोपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरह तिन आनंद गनेरे, प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंदर जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू ना झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन ने चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार, सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहु कुंड जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन मह आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक, दीन

प्रभ साथ अष्टपदी। जह मात पिता सुतमीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुन है चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सूक नेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंदना पर है, हर का नाम जपत निस्तर है। अनक माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जे मार्ग जात अकेला, तै हर नाम संग हो सोहेला। ऐसा नामन सदा ध्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनक बिघन जय आय संघारे, हर का नाम तत्काल उदारे। अनक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हों मैला मल कबो न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध के संग। जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जे पैडे मां अंद गुमार, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंत रको न सजानू, हर का नाम तै नाल पछानू। जय महाभयान तब तबो काम, तै हर के नाम की तुम परशाम। जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ख है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जनकोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध गमात। हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नोदान। मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन के बिरत बिक। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को त्रिवत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत को परे न भंग। हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के मालक जीना, हर तन जन को प्रभ दीना। हर हर जन के उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत बोध जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर के भगत मुक्त वो करे, नानक जन संकेते दरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संतर दिवस है, संत प्रताप दुर्त सब नस है। संत का संग वडभागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुलक शवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को इसलोक। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, पेखे सर्व टंडोल। पूज सनाई हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म तर्म क्रिया, सगल त्याग वन मदे फिरिया। अनक प्रकार किए वो जतना, पुन दान हो में वो रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्तनेम करे वो पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महादास तभी सर थीवे। अग्न माए होमत परान, कन कसव है वरुपुम दान। न्यौली कर्म करे वो आसन, जैन मार्ग संजमत साधन। निमख निम कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मैल ना जावे। हर के नाम समसर कश नाहे, नान गुरमुख नाम जबत गत पाए। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमाना मन ते हुटै। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल ना तन ते जात। इस देही को वो साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे। जल तो वह बो दे अनीत, सुध कहां होए काची भीद। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पद बो मूच। बहु सियाण जम का भो बया, पैनक जतन कर त्रिसना त्रापे। पेख अनेक अगन नहीं बूझे, कोटो पाव दरगह नहीं सीजे। छूट सुनाई उपयाल, मोहि ब्यापे माया जाल। अवर करतो सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए।
चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे होमे शोरे, जे को जन मरण ते डरे साजना की सरनी परे, जिस जन को प्रव दर्श ब्यासा नानक ताके बल बल जासा, सागल पुरख में पुरख प्रदान साध संग जाका मिटै विमान, आवस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते उच्चा, जाका मन हुए सगल गिरीना हर हर नाम तिन घट घट जीना, माने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पापो नहीं लेपा, निर धन को तन तेरो नाव, निथावे को नाव तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल घटा को देवो दान, करन करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानू आपे अपन संगा प्रभ राते, तुमरे उस्त तुम ते होए नान कवर ना जानस कोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी हर को जासुन रसन बखानी, सगल

मन परगास पारी शांत संगंत प्रतिष्ठा न प्रभु का लागा मीठा सकट माए अनकरानन दिष्टाए नौ निधे अमृत प्रभ का नाम देहि में इसका बसराम संस्मरण तैनाद कहना जाय चरम पाद तैन देखे आज साफ दिखाए ना तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बार नंत कटका ब्याव रहा भगवंत तन माए आकाश प्याल सब लो पून प्रतपाल बन तन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन बणी बसंतर माए चार गुण दे समाए तिते पे नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सो पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूरन खतर मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले आपे अडोल न कबहूं डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुणे मोल सर्व जोत में जाके जो तारे हो स्वामी ओत पोत है गौर परसा परम का नास नानक तन में विश्वास न का बेकंसा ब्रह्म सन्ना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो भजन सर्व्यापी राम सरंजन जाता तिसकी रैत सत बन साधु सब कैद जो जो होए सोई सुमन करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसाए बार भी ओही नान दर्शन दे सामोही आप सत किया सब सात ते प्रदेशली उत्पात ते पावे तां करे अंग विस्तार पावे तां एक अंकार अनकला लखी न जाए जे पावे ते लय मलाए कौन नेट कौन कहिए दूर आपे आपा भरपूर अंतर का साब जड़ाए ना ते जन आप जाए सरभूत अवतारा सर्व नैन आपे गणहारा सगल समगरी जा का ताना आया पंजा सापे सुना मन जाने खेल मनाया गया कारी की नी माया साब के मतलब तो रहे जो कहना सो आपे कहे आ गया आवे आ गया जाए नानक जा पावे ता ले संभाए स्त्यो सुना ही बुरा उरे कहो किने की करा पलग तू ता नहीं की आपे जाने अपने जी की आप साई तारी सब साजोत बोता अपन संगराज ताकि गद में कहीं न जाए दूसरो इतना सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर पशा नान के जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कलवंत पतवंत जीवन मोत जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जाने आमन कहे सवाओ जन कहे संग चित आवे नाओ आप मूत मूत करे संसार नानक ते जन कहो सदा नमस्कार सलो पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्ट पारी पूरे गुर का सुन बदे पार ब्रह्म निट कर पे सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चंद आस अंत्या गो तरंग सिदा की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो अगन सागर तरो हर दन गे परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम गुर सहज आनंद सा संप परमानंद नरगनवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमरा पियो चेचित नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दो पंजन पूरन कृपाल सिम सिम नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के बचन मलीक लारे रतन सुंद कुमार तो आधार अवतरे लोक निस्तार सफल जिन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहत वाजय सुन सुन करे प्रभु गाजय पाटे गोपाल मात के माथे नानक उतरे दिन के साथे संजो सुसरनी आए करके प्रभा मलाए मिट गए बैर पए सबरीन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बिकार तेरा ते राम ना सुरन कहते कर प्रसाद या प्रतारी नान निभिखे बमारी प्राव की उस्त करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नामो जिस मन बसे सोहोत निदान सर्वे शाहता की पूर्ण होए प्रधान पुर पर सब लोहे सब तुज पाए स्थान बोर्न होवे आमन जान हर तन खाड़ जले जन सोए नान जे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बोध ग्यान सर्व ते सिद्ध विद्या ताप जो प्रत्यान ज्ञान सेठ उत्तम स्नान चार पदार कम प्रगास सब के मसल ते उदार सुंदर चतर तत का बेता समदृष्टि दृष्टि ताए फालती जन के मोह पने गुरु नानक नाम बचन मन।

बोलना जी। सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नाउ ने दया वै ताए, सब थई हुए सहाय सब थई हुए सहाय। दसवां पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थई हुए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई, तेग वाही देख के अण डिट कीता। तिना प्यारिया सचियारिया जी की नेक कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहेब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्मे तसीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नल चरवाए, गुरुद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां संघ नवाही, भाणे नूं मिठा करके मन्निया तना सरकवाना। समूह शहीद सिंघां सिंघणियां जी की ने कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आमन का सरका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसार दान भरोसा दान दाना सिर दाना नाम दान। श्री अमृतसर जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगिया टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मान नीवा मत उच्ची माता राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अंतर जामी पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तों जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे ने माणिया दे माण ने ताणिया दे ताण ने उटिया दी ओट ने आसरियों के आसरे अकाल पुरख अंतर जामी पिता वाहिगुरु जी आप जी के पवित्र चरण कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी हे कृपालू शहनशाह। आप जी की मेहर सदका आप जी की पवित्र हजूरी दे अंदर संध्या काल दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर रब्बी बाणी दे पठन पाठ गुरबाणी कीर्तन कथा विचारा ढाडी वारा गुर इतिहासक विचारा हुई ने महाराज। समुचा प्रोग्राम आप जी की पवित्र हजूरी अंदर नभाद्या हुई बेअंत प्रकार दियां भुल गलतियां खतावां आप जी ने बख्श लैनिया। अगाम वास्ते समत बुद्ध मेहर करके बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी ते इतिहास के अर्थ भाव आईया हुई सर्वत संगतां दे हिरदियां विच वसाउणे मेहर करनी महाराज। इस वक्त सजे हुए दीवाना अंदर बेअंत संगतां ने आप जी के चरणों के हाजरियां भरिया सरबत संगतां दीयां हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनिया। चल के आए हुए कदम कदम लेखे विच लाउणे अरदासां बेनतियां भावनावां गुरमत मुताबक परिपूर्ण करके दरों घरों गुरु सिक्खी सिदक भरोसा नाम दान मेहर करके बख्शिश करना। सरबत संगतां दे परिवारां दे किरत कमाइयां च बरकतां कारोबारी तरक्कियां वाधे मेहर करके बख्शिश करने। दुखां दर्दां दलिद्रां विघनां दा नाश करके घरां सुखां दे प्रकाश करने। देशां विदेशां विच विचरदिआं सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। दरों घरों शरीरक तंदुरुस्ती देह रोगता चढ़दी कलादियां दातां बख्शणियां। रब्बे कारजां दे सफलतावां बख्शिश करनियां। परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखदिआं होइआं काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज वाला जीवन मेहर करके बख्शणा। बच्चिआं नूं लंबी आयु बच्चे माता पिता दे आग्याकार देश कौम दा प्यार नाम बाणी दीआं रहमतां चढ़दी कला दा जीवन गुरु ग्रंथ गुरु पंथ आशे मुताबक जीवन जाच नेक मार्ग ते चलण दी प्रेरणा मेहर करके बख्शिश करनी। इस वक्त आप जी के पवित्र चरणां दे विच संध्या काल दे सजे हुए दीवाना दी संपूर्णता दी अरदास। आखर वादा घाटा भुल चुक माफ करना बख्शो पवित्र हुक्मनामे। सही प्यारे मेलो जिन मिले आप जी का नाम चेतावे
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ।

शेख नाग तेरो मर्म न जाना, संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ, हनुमान सर गरुड़ समन्ना, सुरपत नरपत

सो पर मैं नाहीं, पग लग राम रहे शरनाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु साहब जी दे सजे हुए दरबार दियां हाजरियां भर रही जुड़मिल बैठी गुरु प्यारी मानयोग साध संगत सतगुरु की बख्शिश सदका सजे हुए दरबार दियां हाजरियां आप जी भर रहे सी। धन्यवाद गुरु सवारे ढाडी जथे दा, आप जी नूं ढाडी वारा गुर इतिहास सरवण करवा रहा सी। जथा जथे दी चढ़दी कला की अरदास गुरु चरणा विच करने आ। तो दवान की संपूर्णता की अरदास, सरबत्ते भले की अरदास गुरु साहब जी की मुबारक पवित्र चरणा में हुई। बख्शिश रूप पावन हुक्मनामा आप जी ने सरवण किया। गुरु पातशाह मेहर करन बख्शा पावन उपदेश साडी जिंदगी जीवन का आधार बने। गुरु चरणा में अरदास और इहदे नाल ही सजे दवान की संपूर्णता, कड़ा प्रसाद का वर्तारा हो रहा। जिन्हें प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो। उपरंत गुरु का लंगर आई हुई सारी संगत वास्ते तैयार है। सब ने आपो अपनी लोड़ मुताबक छक के जाने की कृपालता करनी। दो श्री अखंड पाठ साहब कल रोज तो गुरुद्वारा साहब च आरंभ ने। गुरबाणी के प्रवाह चल रहे हैं। गुरबाणी पाठ सुन दियां चाहवन संगतां हाल नंबर 2 दे विच जां हाल नंबर 3 दे विच बैठ के आप जी गुरबाणी पाठ सरवण करके लाहा प्राप्त कर सकते हो। तो इनियां को बेनतियां प्रवान करनियां। सुख आसन की सेवा थोड़ी देर रोक के होगी। तो आप सर्वत संगतां दा जुड़मिल बैठी समुची संगत दा एक बारी फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो करो कृपा, बख्शो आग्या, बुलाओ फतेह सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

देहे किसकी भापुरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोही कुल पली जा कुल हर को दास। जह कुल दास न उपजे सो कुल टाक पलास। कबीर है गे वाहन संगन कण लाख तजा फहराए। एह सुख ते पिखिया भली जो हर सिमरता दिन जाए। कबीरा सब जग हो फिरयो मादल कंद चढ़ाए। कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती भीतर अंदा निकसे होयाए। जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल। हर का सिमरन सार कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाई है साथ न लीजे कोए। पासों पाओ न दीजी है आगे हुए सो होए। कबीर जग बंद हो जे जेवरी तेह मत बंदो कबीर। जह आटा लून ज्या सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सुजाई सनहा। अजरु जियो न सोडई रंकाई नहनहा। कबीर नैन निहारो तुझ को स्वर्ण सुनो तो नाओ। बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुरक नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद। चरण कमल की मौज में रहो अंत और याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान। कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के क्या कहो कहे ना को पते आए। हर जैसा तैसा उही हरख रहो गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे। जैसे बचरे कूंज मना माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर साया बर्ख परे सरताल। चातरक जो तस्कर रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चकवी

कभी अहराई बह सोहे आ रहो रे शंख मजूरा देवल देवल ताहाड़ी देशे उगवत सूरा कबीर सूता क्या करे जाग रहो पै दुखा जाका बासा गोर मैं सो क्यों सोवे सोखा कबीर सूता क्या करे उठ के जपे मरार एक दिन सोवन होएगा लाभे गोठ फसार कबीर सूता क्या करे बैठा रोय और जाग जाके सा

तै अब क्या काढ़े जाए। कबीर कारण जो पयो जो की नौकर तार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सिरजनहार। कबीर फल लागे फलना पाकन लागे आम, जाहे पहुंचो खसम को जो पीच न खाई।

धर भूले पटका खाए। कबीर पाहिन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागद की ओबरी मस के कर्म कपाट, पाहिन बोहरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अब करता सोताल, पासे कसून होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत एक देखे आ,

कंचन बहारा पितर भरि भंगार कबीर रोड़ा होयरो बाट का तज मन काय अभिमान।

जो मान तजया नहीं जाए। मान मुनि मुनवर गले मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, शब्द जो बाया एक, लागत ही पे मिल गया, पर या कले जैसे का। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूका, अंधे एक न लग गई, जो बांस बजाइए फूका। कबीर है गे वाहन संगन काना, सतरपति की नार, ताश पटंतर ना पुजे, हर जन की पन

घाट, जब ही पाइये पारखु तब ही अरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिया, ऐसा सिमरो नित्ता अमरापुर बादशाह करो, हर गया भोरे बेता। कबीर सेवा को दोहे पले, एक संत एक राम, राम ज दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जेह मार गा पंडित गए, पासे परी बहीरा, एक अवघट घाटी राम की

तब कुल किसका लाज सी, जबले धरे समान कबीर डूब होए गौ बापरे, बहुलोकन की कान पुरुषी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना विद को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दाजन होत है निर्दावे रहे निसांगा, जोन जानर दावे रहे सो गने इंद्र सो रंका। कबीर पाल समूहा सर्वर परा, पी न सके कोई नीरा, भाग बड़े ते पायो तू पर पर पियो कबीरा। कबीर पर पाते तारे खिसे त्यो, एहो खिसे शरीरा, ए दो अखर ना खिसे छो गह रहे हो कबीरा। कबीर कोठी काठ की दैद से लागी आग, पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग। कबीर संसा दूर कर कागद दे बहाए, बामन अखर सोध कै हर चरनी चतलाए। कबीर संत की संत न साडे संत ई, जो कोटक मिले असंत। लागर भयंग भेड़ो ना शीतलता ना तजंता।

राम सबे कहे सोही कौतकहार। कबीर रामे राम कहो कहबे महे बबे का। एक अनेक के मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साध न सेवी है हर की सेवा ना है। ते कर मरहट सारख है भूत बसे तिन माहे। कबीर गुंगा हुआ भवरा बैरा हुआ काना। पावो ते पिंगल पया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक। लागत ही पोए मिर्ग गिर परया परा कलेजे से का। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बकार। बिन संगत मानई होए गई पटसार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मलाए। अनक सियाने पच गए ना निरवारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिले आ खुदाए। साई बुझ स्यों लर परया तुझे किन फरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर। साई बुझ में क्या खता मुखो न बोले पीरा। कबीर जिया जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल। दफ्तर दही जब काटे है होएगा कौन हलाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए। दफ्तर लेका निकसे मारे मोहे मुखाए। कबीर लेखा देना सुहेला ज्यों दिल सूची होए। उस साचे दबान में पल्ला न पकड़े कोए। कबीर धरती और आकाश में दोहे तो भरी अबाद। खाट दर्शन संशय परे और राशि सेदा। कबीर मेरा मुझ में किस नहीं जो किस है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया जत देखूं तत तू। कबीर बकारे चितवे झूठे करते आस। मनोरथ कोई न पूरे चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कते न डोलई जिस राखे सिरजनहार। कबीर कहानी पीड़ित सतगुर लिए सड़ाए। परा परबली परा पूर्बली पामनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज पंड तो जाए। ना हार भजो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कुकर भौंकना करंग पिसे उठता आए। करमी सतगुर पाया जिन्हो लिया सुडाए। महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बैसे गाए। धरती पार न व्यापई उनको लाहू लाए। महला पंजवा कबीर चावल कारने तुक्को हली लाए।
संग कुसंगी बैसते तब पुसे धर्म राय नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीता काहे सिपो साई लै राम न लाभो चीता नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल हाथ पाँव कर काम सब चीत नरंजन नाल महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम हूँ किस हूँ नाहे जिन इहो रचन रचाया तिस ही महे समाए कबीर कीचड़ आटा गिर परया किसु न आयो हाथ पीसता पीसता चाबिया सोही निबया साथ कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगन करे काहे की कुशलात हाथ दीप कुह परे कबीर लागी प्रीत सजान स्यो बरजे लोक अजान तासो टूटी क्यों बने जाके जी प्राण कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे महो सवार कारज साढ़े तीन हाथ

करे जो मेरे चित न होए। महला तीजा चिंता भी आप कराय सी अचिंत भी आपे देह नानक सो सलाही है।

रात दिवस के कुकने कबू का सुने पकार। कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर में मंता, अंकश ज्ञान रत्न है खेवट बिरला संत। कबीर राम रत्न मुख कोथरी पाखर आगे खोला, कोई आए मिलो गो गहा की ले गो महंगे मोला। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटाम्ब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना भंब। कबीर आखी केरे मटके पाल पाल गई बहाए, मन जंजाल न छोड़ई जम दिया दमा मायाए। कबीर तर्व रूपी राम है फल रूपी बैराग, साया रूपी साध है जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोहे बाहर मास फलंत, शीतल साया गहर फल पंखी केला करंत। कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जवंत, पंखी चले दिशावरी बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु सांग प्राप्ति लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक न अवकट काट। कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन छेती गोष्ट

आए तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसालत जाए नीचे लोइना कर रहो ले साजन कट माहे सब रस खेलो पियो सो किसे लखवाओ नाहे आठ जाम चौठस करी तो निरखता रहे जियो नीचे रोइना क्यों कराओ सब घट देखो पियो सुन सखी पियो मैं जियो बसे जियो बसे।

दुख मुझको दुख सभाया जग उच्चे चढ़ के देखया ता घर घर एह अग महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली मज वसूला बाग जो ना जो जाना पीर नवाजया तिन्ना अंच न लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुबंदड़ी देह विरले केई पाइयना जिन्ना प्यारे नेह कंदी वह नटाए तोपी लेखा देवना

फरिदा रुखा छेती देहो गया सूला छेती रात खड़ा पकार है पातनी बेड़ा कपुरवात लम्मी लम्मी नदी वहे कंदी केरे हेता बेड़े नू कपर क्या करे जे पातण रहे सुचेत फरीदा गली सो सज्जन वीहे एक टनहिंदी नाल हां तुखां ज्यों मलहे कारण तिन्ना मां पिरी फरीदा एह तन पौकणा नित नित दुखिया कौन कन्नी बुझे दे रहा किती वगे पौना फरीदा रब खजूरी पक्कियां माख्यो नहीं वहाना जो जो वंजे डिहड़ा सो उम्र हाथ पवन फरीदा तन सुका पिंजर थिया तलिया खुडे काग अजे सो रब न भोड़ियो देख बंदे के पाग कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत सुहा पिर देखन की आस कांगा चूंज न पिंजरा बसे ता उडर जाए जित पिंजरे मेरा सोह वसे माश न तिंदू खाए फरीदा गोर नमाणी साड करे नी करे करो सर पर मैथे आवना मरनो ना डरियाओ इनी लोनी देख दिया केती चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवारे मैं मिले आ सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए कंदी उत्ते रुखड़ा किचर का बने तीरा फरीदा कच्चे भांडे रखी है किचर ताई नेरा फरीदा
ਮਹੱਲ ਸਿਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਗੌਰ ਫਰੀਦਾ ਮਹਿਲ ਨਿਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ ਗੋਰਾ ਸੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਬੈਸਣ ਰੂਹਾ ਮੱਲ ਆਖੀ ਸੇਖਾ ਬੰਦਗੀ

जिसे ज्यों दरिया वे ढाहा अगे दोचक तपया सुनिए हूला पवे कहाहा इक नानू सब सोजी आई एक फिरदे वे परवाह अमल जे कीतिया दुनी बेचा से दर

कन्य भंगला बैठा केल करे केल खंदे अंजनु अचिंते बाज पे बाज पे तिस रब दे केला विसरिया जो मन चेतना चेते सन सो गाली रब किया साढ़े त्रैवण देहोरी चले पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन मलकल मौत जया वसी मलकल मौत जया वसी सब दरवाजे भन्ना तिना प्यारिया भाइया अगे दिता बन्ना वेखो बंदा चलिया चौं जणिया दे कन्न फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगह आए कम फरीदा हो बरहारी तिन पंखिया जंगल जिन्ना वास कंकर चुगना थल वसना रब

0: पत चले चढ़ पाए चारे कुंडा ढूंढिया रहन कथा ओ नाहे
1: फरीदा
0: पाठ
1: पाड़ पटोला तजकरी कंबलड़ी पहरे ओ

क्या हंस क्या बगुला जाको नदर तरे जे तिस पावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास यो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कवन सो अखर कवन गुण कवन सुमणिया मंत कवन सो वेसो हो करी जित वसया वै कंत निवण सो अखर खवण गुण जेबा मणिया मंत ए त्र पैणे विस कर ता वसया वीकंत मत होदी हुए इयाणा तान होदे हुए निताणा

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साहिबन गुरप्रसाद सवैये श्री मुखबाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे ब्यापत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रख्या करे आपे हर पत अविनाशी अभिगत आपे आप उत्पत एक तू ही एक अन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार

तुल ब्रह्म संसर एक जीह क्या बखाने हा के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार।

कर मंत्र ना दूसरो तर उपत परलो एक निमख तू कर आन नाही समसर जियारो निर्मर कोट पराचित जाहे नाम लिए हर हर

निरंकार आकार अचल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हुए कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन

बिपत हरी। मात पिता भाई अर बंदप भूजन की सब सूज परी। वर्तमान होवत दिन प्रत।

कोस न छूटा, करत विकार दो कर चारो, मित्र ना पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरख की छारों।

ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरण गगन आवत फुण तावत। सिद्ध मनुख देव अरदानव एक तिल ताको अमर मना पावत। प्रे प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताकै दर्श समावत। तिसह त्याग आन को जाचै मुख दंत रसन।

जो बन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरियो है अनेक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरियो है प्रेम भगत उदरै से नानक कर कृपा संत आप करियो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी इस नान दान तापन सोच क्रिया

नानक दास सदा बलिहारी, आवद कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग, दावन बंदेव ना जात, बिदे मन दर्श मग, पावक जर्यो ना जात, रहे जन तूर लग नी।

सूखम देह बंदे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बटाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनेक पांत थाटे कर थटुआ सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता

सुख देव परीखत गुण रवै गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नवतन जग छायो।

सदाय कललिव रहै करण सुइच्छाचारा। द्रुम सपूर जो निवै खवै कस बिमल विचारा।

जन दर्शन लाने पयो, मन विश्वास पायो, गहर गहु हदरथ दियो, गरल नास तन नठ्यो, अमयो अंतर्गत पियो, हृद विश्वास पायो, गहर गहु हदरथ दियो,

दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सवैये महले तीजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोए पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अचल संसारे जिन

सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुतरिया चवरासी सिद्ध बुद्ध जितराते अम्बरीक पवजल तरिया।

नाम कीर्त संसार किरण रव सुरतर साखा उत्तर दखण पुब देश पश्चिम जस भाखा जन्म तायो सके अथ जित नाम हरदय निवासै सुर नर गण गंतर्ब छे दर्शन या सासै पलो प्रसिद्ध ते जो तनो कल जोड़ करते हायो।

हृदय बसायक हियो सुए रस तिन्हि जातो मुखो भगत उचरै अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्ब एच तिन पायो चरण ता परस की अत चरण गुर अमर पवल रय हाथ ता परस की अथ हाथ लगै गुर अमर पय जीह ता परस की अथ जीह गुर अमर पणिजै नयन ता परस की अथ नयन गुर अमर पखिजै श्रवण ता परस की अथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सके अथ सोही उजत ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सके अथ सो सिर जाल पपणै जो सिर निवै गुर अमर नित ते नर दुख ना भुख ते नर नितानो कहियै ते नर सोख न हुए ते नर से अंत न लहिया

ते नर उथप बिथप सुख लहे ते नर संसार में अपै पट रिप मद तेह सके अथ ती नर जल पपणै गुरु अमरदास सो प्रसन्न जेह।

अमरदास परसिय पुहम पातक बिनासे। गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसा से। गुरु अमरदास परसिया ध्यान लहिया पमुके। गुरु अमरदास परसिया आपौ लभै गो चुके। एक बिन दुगण जो तोर है जा सुमंत्र मन वे लहे। जाल पाप

निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, जह कहता परपूर शब्द दीपक दीपायो, जेह सिक्का संगरियो तत हर चरण मिलायो।

0: जन्म जन्म पासरण तो जप तप सत संतोख पिक दर्शन गुर सिखा सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखा भगत पाए भरपूर
1: कुल निम्बल त्रिगो गुण करतार उचर गुरु अमरदास जिन सीबियो तन दुख दरिद्र पर हर पर चित चित मो अरदास कहूँ पर कह पी न सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हों तको तेरे हुकम पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा जब गुर दिखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा आगम अलख कारण पुरख जो फरमा मैं सो कहूं गुरदई मिलायो पिखिया जिम तू रख त्यों रहो अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो गुर अमरदास कारण करण जिम तू रख त्यों रहो पिखे की गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ विचार पावे कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोई पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो रयो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे सन्यासी तपस्या मुखोए पंडित मिठे बरसी कहो फिर युकन नह परचो लायो कहत्या कहती सुनी रैत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण

तैमर हों। पहर समाध सनाह ज्ञान है आसन चढ़ियो, धर्म तनक कर गयो भगत सील सर लड़ियो। पै निरपव हर अटल मन, शब्द गुर निजा गड्यो। काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंड्यो। भलो पुहाल तेजो तना नृपत नाथ नानक बार। गुर अमरदास सच सल भण, तैं दल यतो इम युद्ध कर। कन हर बूंद बसो रोमावल, कुसुम बसंत गणंत नयावै। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पाल्यो न जो गावै। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोह बन आवै। सवैये महले चौथे के ओंकार सत गुर प्रसाद। एक मन पुरख निरंजन त्याव, गुर प्रसाद हर गुण सद गाव। गुण गावत मन होए बिगासा, सतगुर पूर जन की आसा। सतगुर सेव परम पद पायो, अविनाशी अभिगत त्यायो। तिस भेटी दरिद्र न चंपै, कल सहार तास गुण जंपै। जंपौ गुण बिमल सु जन जन केरे, अम्य नाम जा कौ फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द।

अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत न तरास। गुरु अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अगन दिखत गत चरण कमल जास। सब भेद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुरु रामदास। राडू जिसे तारियो तरत अर व्योम यार पवन ते नीर सार अवर अनल अनाद कियो। सास रेख ने सूर दिन सैल त्रु फल फुल दियो। सुर नर सप्त समुंदर के तारियो त्र पवन जास। सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगाश। कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो। लोह होयो लाल नदर सतगुर जद तारे। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचार। काठों श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुरु चरण जिन परसिया से पाश परेत सुर नर पए। जाम गुरु हुए वल तने क्या गारु वदिजय। जाम गुरु हुए वल लख बाहें क्या किजय। जाम गुरु हुए वल ज्ञान यर ध्यान अनन पर। जाम गुरु हुए वल शब्द साखी सो सच है कारु। जो गुरु गुरु एह निस जपै दास भट बेनत कह। जो गुरु नाम रिद में तरै सो जन्म मरण दो थे रह। गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अघन कटै सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कह। जिन गुरु न देखियो न कियो ते अकियत संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। तारण तरण समृत कल युग सुनत समाध शब्द जिस कीरी। फुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तेह नेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे। जौ हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। हुती जो प्यास पियूस पवन की बंचत सिद्ध को बिद मिलायो। पूर्ण पो मन ठौर बसो रस बासन स्यों जो दहन दिशतायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी समझ लन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ धरयो। गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरयो। निस बासुरी एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो। पान दास वास जगत्र गुरु की पारस भेट परस करयो। रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ धरयो।
अब रखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाखश फारे कर आज। फन द्रोपति लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते राखिया, गनका पढ़त पूरे तेह काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग हुए, राखो दास पाट की लाज। झोलना गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप प्राणियो, शब्द हर हर जप नाम नाम निद अप रसनिया हिन्स रस सत कर जानियो। फोन प्रेम रंग पाइये गुरमुख ते आइये अन मार्ग तजो, पजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद तरो पंचपू बस करो, जन्म को ले उद्धरो द्वार हर मानियो। ज्यो तब सो किए ते उत तुम बंचवो, गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप प्राणियो। गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर, अगम गुण जान दान हर मन तरो, ध्यान अहनिस करो बचन गुर हृदय धारो। फन गुरु जल बिमल अथाह मजन, करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सार। सदा निरवैर निरंकार निरुपाओ, जप प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुर मुख भजो, गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर। गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु हर पाइये, उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर, मन मिलत लिव लाइये। फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस, मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइये। अमृत प्रवाह छुट कंत सद द्वार, जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइय। नाम निर्भान निधान हर उर तरो, गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे, जा की सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर, गण तर तेतीस गुर बचन सुन कन रे। फुन तरें ते संत हित भगत गुर गुर करें, तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे। तरें नारदाद सन काद हर गुर मुख, तरें एक नाम लग तजो रस अन रे। दास बेनत कहे नाम गुर मुख लहे, गुरु गुर गुरु गुरु गुरु जप मन रे। श्री गुरु साहिब सब ऊपर, करी कृपा सत जुग जिन त्रूपर। श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं। अलख रूप जी लख्या न जाई, साधक सिद्ध सगल शरण आई। गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया न कोई। गुर प्रसाद

शब्द सवारियो भवजल सायर सेत नाम हरि का बोहिता तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उदरियो जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठै पायो आव नाहीं अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ता ते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुर रामह दियो गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख प्रतख लिख्यो अशर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमगै तेज पूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो।

काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उधारण बसें संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जाने पयो ते समसर सोई।

0: अवगुणी चिंज भरी गंदी आ, सरवर हंस न जाने काकु पंखी संग, साकत स्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग, संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ, निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाओ। जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत न पाओ, पैंदा खादा बाद है जा मन दूजा पाओ, वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा लाओ, नानक नाम सलाह तू होर हो मैं आवो जाओ, है न विरले नाही घने फैल फकड़ संसार, नानक लगी तुर मरे जीवन नाही तान, चोटे सेती जो मरे लगी सा परवान, जिसनु लाए तिस लगे लगी ता परवान, पिरुम पै काम न निकले लाया तिन सुजान, पांडा तो वै कौन जे कच्चा साजिया, धातु पंज रलाए कूड़ा पाजिया, भांडा अणग रास जां तिस पावसी, परम जोत जागाए वाजा वावसी। मनो जयन दे कूप,
1: मनो जयन दे कूप कहा दर्द न जान नहीं, मन अंदे उंदे कवल देसन खरे स्वरूप, एक कह जानन कहा बूजन ते नर, सुगड़ स्वरूप मन अंदे उंदे कवल देसन खरे रूप, एक कह जानन कहा बूजन ते नर सुगड़ स्वरूप, एक नाद ना भेद ना गिया रस रस कस ना जणंत, एक ना सिद्ध ना बोध ना अकल सर अखर का प्यो न लहंत, नानक ते नर असल खर जे बिन गुड़ गुड़ जे बिन गुण गर्भ ग्रंत, सौ ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म जपता संग मावे कर्म, सील संतोह का रखे धर्म बंधन तोड़े होवे मुक्त, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत, खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर, खेत पछाणे बीजे दान सो खत्री दरगह परवान, लब लोभ जे कूड़ कमावे अपना किता आपे पावे, तन न तपाए तनूर ज्यों बालन हड न बाल, सिर पैरी क्या फेरिया अंदर प्री संभाल, सबनी कटी सौ वसै सबन कट न कोए, नानक ते सुहागणी जिन गुरमुख प्रगट होए, जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मेरी आओ, एत मार्ग पैर त्री जाए सिर दीजे कान न की जाए, नाल कराड़ा दोती कूड़े कूड़ी पाए, मन न जापे मूलिया वे किते थाए, ज्ञान इन ज्ञान पूजा अंध वर्तावा पाओ दूजा, गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मुलन बाकी, माणू का चल कल उठी चल है स्वाद न वही गल है, राम चुले दल मेल वै अंतर बालिदकार, बंतर की सेना सेवी है मानता जो जपार, सीता लै गया दैसरो लक्ष्मण सराप, नान करता करण हार कर वेखे थापो थाप, मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग भोला दैत न समझी तिन प्राकी है काम नानक वे प्रवास हो कीर्तन मिटी राम लाहौर शहर जैर कैर सवा पैर महला तीजा लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा कर महला पहला उदो साहे क्या नसानी तोड़ न आवे अन्नी उदो सी करे ही बुठी कुड़ी रनी तमी सती रनी करे स्यापा रूमन कुड़ी कमी जो लेवे सो देवे नाही खटे दम सहमी पबर तू हरियावला कवला कंचन बंद कह दो खड़े साड़ियो काली हो या देहोरी नानक मैं तन भंग जाना पानी नाल हां जैसे ती मेरा संग जिडटे तन पर फड़े चढ़े च वगण वन राजन कोई जीविया पहुंच न चलिया कोए ज्ञानी जीवाय सदा सदा सुरती ही पातोए सर्फ है सदा सदा इवे गई विहाय नानक इस तू आखी इवन पुछया ही लै जाए दोष न दो राय नहो मचले जा बुढ़ा हो वह गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पौना खाती टोवै पूरे का किया सब किश पूरा कट वाद किह नाही नान गुरम ऐसा जाने पूरे माए समाए श्लोक महला तीजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद अभ्यागत ए ना आखिया जिनके मन में भरम तिनके दिते नानका ते हो जिहा धर्म अभय निरजन परम पद ताका भिख कोय तिसका भोजन नानका विरला पाए कोय होवा पंडित जोत की वेद पड़ा मोहचार नवा खंडा वे जानी है अपने चज विचार ब्राह्मण कैली कात कंजका अंचारी का तान फिटक फिटका कोड़ बदिया सदा सदा बमान पाए ते जाए विसर नानका एक नाम सब बुद्धि जाली एक रहे तत ज्ञान माथे जो तुर लिखिया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखिया सो वरदा सो बूझै जिसनों नदर होए जिनी नाम विसारिया कूड़े लालच लग तंदा माया मोहनी अंतर जिन्हों अग जिन्हा वेलना तुम्बड़ी माया ठगे ठग मन मोबन चलाई है ना मिली वग साग आप पलाए भूलिए आपे मेल मलाए नान गुरमु छुटिया जे चले सतगुर पाए सलाही सलाहना भी सचा सलाह नान सचा एक दर बीबा पर हर आए जय नानक जय जय मैं फिर तै तै साचा सोए जय देखा तै एक है गुरमु प्रगट होए दोख वसारण शब्द है जे मन वसाए कोए गुर कृपा ते मन वसाए कर्म प्राप्त होए नानक हों करते खम वह खून लाख संख सतगुर मिले सुबर है साचे शब्द अलंख जिन्ना सतगुर एक मन सेवया तिन जन लागू पाए गुर शब्दी हर मन वसाए माया की पुख जाए से जन निर्मल उजलै जे गुरमु नाम समाए नानक होर पाज नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नामरते पातशाह ਸਹਿਜਾ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲੈ ਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਪੁਰਖੇ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰਹਿਤ ਲੋਚੇ ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਖੱਟ ਰਸ ਮੀਠੇ ਪਾਏ ਤਿਉਂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਤਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖਿਆ ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰੇ ਆਗੇ ਜਾਏ ਪੈ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਲੋਚਾ ਪੂਰਮ ਲਾਏ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਤ ਖਾਦੇ ਤਿਪਤਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਤਪਤਾਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਨ ਤਨ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਰਤਾਰ

आर गोरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश तिथे ऊंग ना पुख है हरे अमृत नाम सुख वास नानक दुख व्यापनी जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजय एक बिंस जाए हुक्मे अवे जाए जमण मरण चुकही रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाई न करना कोई न जाए जिन गौ कृपा धारियन तिना सतगुर मिलया ए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सह सबाए नानक भगती रत्या हर हर नाम समाए मन मोह चंचल मत है अंतर बहुत चितराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जमकाल न छोड़ी दूजे पाए खवाई जो बन जानदा नदर न आवे जर पहुंचे मर जाई पोत कलत मोहित है अंत बेली को न सिखाई सतगुर सेवै सो सो पाए ना वसे मन आई नानक से वड़े वड़ पागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम न चेतनी बिन नामे दुख रोए आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए मैं अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए नानक बिन नावे मैलिया मुए जन्म पदार्थ खोए मन मोह बोले अंदल तिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास ओना अपने अंदर सुध नहीं गुर बहिना करे विसास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिप सदा विगास हर ज्ञानिया की राखदा हो सरबलहारी तास गुरमुख जो हर सेवंद है जा नानक ताका दास माया भयंगम सर्प है जग घेरिया बेख माए बेखा मारना नाम है गुर गर शब्द मोह पाए जिन कहो पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए बिल सतगुर निर्मल होया बेखौमे गया बिलाए गुरमुखां के मुख उजल हर दरगह सोभा पाए जन नान सदा कुरबान तिन जो चाले सतगुर पाए सतगुर पुरख निरवैर है नित हिरदे हर लिवलाए निरवैरे नाल वैर चाहिंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध हंकार है अंदन जलाए सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित भौंक दे बेखा दे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए बेसुआ केरे पूत ज्यों पिता नाम तिस जाए हर हर नाम न चेतनी करते आप खवाए हर गुरमुख कृपा धारियन जन विछड़े आ मलाए जन नान तिस बलहारने जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबर है बिन नामे जंपर जाए नानक बिन नामे सुख नहीं आए गए पछताए
ਚਿੰਤਾ ਤਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਿਆ ਆਨੰਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਬੂਜੀ ਆਏ ਸਾ ਤਨ ਸੁਤੀ ਨਚਿੰਦਾ। ਜਿਨ ਗਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲੈਣ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਉਰਤਾਰ। ਐਥੇ ਉਥੇ ਮੰਨੀਅਨ ਹਰ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਵਤੇ ਤੇ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰਚ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਪਿਰਮ ਪਿਆਰ, ਜਮਕਾਲ ਨੇੜਨਾ ਆਵਈ ਆ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹੈਨ, ਨਿਰਤਨ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਕਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਠਵਰ ਨ ਠਾਉ, ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ। ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਐਨ ਲਾਗਾ ਪਾਉ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਧੂੜ ਤੈਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੇ ਜਾਉ। ਲੱਗ ਚੁਰਾਸੀ ਮੇਦਨੀ ਤਿੰਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਨਾਂਤੀ ਵਾਰ। ਬਿਨ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵਈ ਕੇ ਸਾਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਬੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁੱਝ ਗਈ ਜਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਰਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਾਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ।

नामै किन मर जाया। मन अंतर होमे रोग परम भूले होमे सागर दुर्जना। नानक रोग गवाए मैं सतगुरु साधु सज्जना। गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात हर हर रति हर रंग चोले। हर जैसा पुरुष न लभे सब देखिया जगत में टोले। गुर सतगुर नाम दड़ाया।

जिचर आप कर पाल शब्द अकुट बाबा नानका खाई कर चन माल खांब वे कांदड़े जे

पातिश सिर शाम दैशा जैस पास बैठे सो ही है सबना दा विसा सजन सचा पातिशा सिर शाम दैशा जैस पास बैठे सो ही है सबना दा विसाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नामा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्मे अकार थकीन कहो नानक हर पज मंदा जे बेद जल को मीन बेख्यान सो काहे रचयो निमक न हो अदास कहो नानक पज हर मना पर न जम की तरना पोयो ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना ओद जात है बीत बिरद पयो सूज नहीं काल पहुंचो आन कहो नानक नर बावरे क्यों न पजे भगवान तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इन मैं का संगी नहीं नानक साची जान पतिते उदारन पहरन हरे अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानी है सदा बस्त तुम साथ तन तन जे तो को दियो तास्यो ने हो न कीना कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन तन तन संपै सुख दियो अर जैनी कै ताम कौ नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोय कौ नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए जैसे मरत गत पाई है

पांच तात को तन रच्यो जानो चतर सुजान जहते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान गड़ गड़ में हर जू बस संतन के हो पुकार कौ नानक ते भज मना पौन दे उतरे पार सुख दुख जे परसे नहीं

सोमूरत भगवान ओस्तत निंदया नाहे जय कंचन लो समान कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हर का सोग जाके नहीं बैरी मीत समान कौ दानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान पै काहूं को देत न पै मानत आन कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कौ नानक सुन रे मना ते नर माथे पाग जे माया ममता तजी सब ते पयो दास कौ नानक सुन रे मना तेह काट ब्रह्म निवास जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पशान कहो नानक वह मुक्त नर ए मन साची मान पैनासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम जे बा गुण गोबिंद भजो कर्ण सुनो हर नाम कौ नानक सुन रे मना परे न जम कै ताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोहंकार कौ नानक आपन तरै

उपजिन सनीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतहि मद माया के अंदर कहो नानक बिन हर भजन

शरण राम की ले कौ नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कौ नानक बिन हार भजन बिरता जन्म सरान जो प्राणी निस दिन पज रूप राम ते जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं पाद रहो बिसरो गोबिंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम न चेतई मद माया के अंदर कहो नानक हर भजन बिन परत ताए जम्बंद सुख में बहु संगी पै दुख में संग न कोए कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कौ नानक हर भज मना निरपै पावे बास जतन बहुत मैं कर रहो मिट्यो न मन को मान

है, दुख को कियो न को कौ नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत भखारी विरत है सब को दाता राम, कौ नानक मन सिमरत पूरन होवे काम। झूठे मान कहाँ करे जग सुपने ज्यों जाना,

स्वान तज तनहिं नेता नानक बेद हर भजो एक मन हो एक चित तीरथ बरते और दान कर मन में तरहे गुमान नानक ने फल जात ते ज्यों कू चरे स्नान सिर कंपे हो पग डग मग नैन जोत ते हीन कौ नानक बिद पई

जान ले और मीत कह नानक तेर नार है जो बालू की पीत राम गे ओ रामण गे ओ जाको बहु परवार कहो नानक तेरे कश नहीं सोपने जो संसार चिंता ताकी की जिए जो अनहोनी होए ये मार्ग संसार को

पशु न होते अपाए, कौन के अबे ओट हर गर जो हो सहाय, बाल हो आ बंधन छुट सब किस होते अपाए, नानक सब किस तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब ताज गए कौन बेहो साथ, कौनान के विपत में टेक रघुनाथ। नाम रे हो साधु रहो रहो गुर गोबिंद, कौनान के जगत में केन जपियो गुर मंत्र। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोय, जैसे मरत संकट मिटा दर्श तुहारो हो।

सात गुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग लापे अठो नंदर प्रथम राग पैरो वै करही पंज राग नि संग उचारे प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गा वै बंगली पुन लेकी के पे बारी है पैरों की पंचो नारी पंज मरुद सा सुनावै बंगाल मर माधव गावै ललत बिलावल गावे अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र भैरव कै गावे गायन पातरे दुतिया माल कौशकला पै संग रागनी पांचो था पै गुण करी और देव गंधारी गंधारी सोती उचारी तनवासरी पांचो गाही मारा कौ साक संग लाई मारु मैं तंग में वारा पर बचन कौश के अभारा खोहड़े पौर नद गाये अष्ट माल कौ साक संग लाए पुन हंडोल पंजनार संग सोती उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर साई सरसी लय पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आये चंद्र में मंगल सहाय सस बान वाय बनोदा गावे सस बसंत कुबोधा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुंडाई दीपक की बारी का शैली पट मंजर ही टोडी कही अलाप का मोदी और गुजरी संग दीपक के था कलंका कुंतले ओ राम कमल गु चंपक के नाम गौरा हो कला कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जाना सामे सिरा वह गावे पांचो संग बरंगण लावे बैरारी करनाटी तरी ही गौरी गावे आसावरी ते बासे सिंध भी हला पी श्री राग स्यो पांचो दापी सालु सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र सी राग कह गुण कौंभीर कष्ट मेघरा वह गावे पांचो संग बरंगण लावे सोट गुण मलारी तो नहीं बुन गावे आसा गुण गुनी उच्च सुर सो पुर गिनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरा दर गई दर के दारा जब लीता नड़े हो जल तारा बुन

लागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित्र

0: प्यारी सत्संग जी सतगुरु जी की अगाध बोध बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या तू दस रहा पासों अनेकां भुल्लां हो गईआं होणगीआं। साध संगत बख्शन हार है, गुरु गरीब ने पातशाह बख्शन हार हन। आने वाले समय च भी असी इस बख्शे कीर्तन करन दी होर सोझी आ जाए, इस तरह ही आप जी के दर्शन करते रहिए, आप जी की सेवा करते रहिए। अगला प्रोग्राम सत्कारयोग सैकटरी साहब पासों सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।
1: गुरु सत संग जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही धनवादी हाँ भाई दरबार सिंह जी के जो आप जी कुरबानी कीर्तन की सांझ पा रहे सन। भाई साहब सवेर के शाम के दीवाना में गुरद्वारा साहब विखे भी हाजरियां भरते हैं। आप भी गुरद्वारा साहब विखे आके कथा कीर्तन सरवण करके अपने जीवन सफला कराया करो जी। अज दे जो यह विशेष समागम धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी में समर्पित हैं, इन्हां दे विच कीर्तन ते लंगरां दी सेवा जो है नगर पुआदड़ा दी संगत वालों, ते इस तरह भाई बलदेव सिंह जी अटवाल ते उन्हां दे परिवार वालों, भाई मनी सिंह जी गिल ते उन्हां दा परिवार, इस तरह भाई मेला सिंह जी सिद्धू ते इन्हां सब परिवार परिवारां वालों जो है कीर्तन ते लंगरां दी सेवा अज दे दीवाना दे विच हो रही है। एक जरूरी सूचना आप जी सांझी करनी चाहते हाँ कि जिस तरह आप रोज़ प्रति अपने समाज में देख रहे हाँ कि खास करके साढ़े जिहड़े आनंद कारज हैं जां ब्याह शादियां जिन्हों असी आख देंदे हाँ, उन्हां दे विच बहुत सारे जो हैं वख वख चीज़ां उन्हां दे विच जो हैं वो कीतियां जा रही हैं। नेता प्रति जो असी ड्रामे देखते हाँ, साढ़े बच्चे ड्रामे देखते हैं, असी पेरेंट्स ड्रामे देखते हाँ, उन्हां नूं वेख वेख के जो साडी आनंद कारज की मर्यादा है उसनों असी बहुत भुलते जा रहे हैं, तो उस तो बहुत दूर भी जा रहे हैं। जदों के साडी जिहड़ी आनंद कारज की मर्यादा है बड़ी सधारण सिंपल अते प्रैक्टिकल लाइफ दे विच काम आउण वाली है। इन्हां चीज़ां नूं असी गुरद्वारा साहब विखे महसूस करते हुए जदों असी रोज़ वेखते हाँ की हो रहा है, तो आप एक प्रबंध किया है कि जिहड़े बच्चों के विआह होने वाले हैं जां जिहड़े असी पेरेंट्स हाँ जिहड़े जिन्हां दे विआह हो भी गए हैं बच्चों के, वो भी गां सिखण वास्ते एक वर्कशॉप का इंतजाम किया गया जो कि 26 जून नूं शाम नूं 6:30 बजे तो लग के 8 बजे तक गुरद्वारा साहब बाद जो ट्रेलर है क्लासरूम बन जो है उस दे विच होवेगी। उदे विच जो साढ़े वे आनंद कारजां दे विच व्याहां दे विच जो ऊणताइयां आ रही हैं वो, तो जो साड़ी आनंद कारज की असली मर्यादा है धन पिर ये न आखियन वैन इकट्ठे होए एक जोत तो मूर्ति धन पिर कहीन, सो ये साड़ी डेफिनेशन है आनंद कारज की। तो एक जोत किस तरह बनना है वो वास्ते साढ़े पास बुलारे खास बुलारे तो वर्कशॉप टाइप होगी, आप जी के सवालों के जवाब भी दिते जाएंगे क्यों ये चीज़ करनी है क्यों ये नहीं करनी, लावां का की मकसद है, लावां सानूं समझाउंदियां की हन, ते जो असी समाज के रोज़ नेता प्रति अपने विआहां तो पहलों कुछ जो कुछ कर रहे हाँ कि वो साड़ी जो है गुरमत दे नाल उहदा मेल खांदी है वो चीज़। सो इन्हां सब दे उत्ते कल्ले ये तुसी बुलारियां वालों ही नहीं सुनना, तुसी आप भी ये विच पार्टीसपेट करोगे क्योंकि एक वर्कशॉप टाइप जी है ये प्रबंध किया गया। सो जरूर नोट कर लो 26 जून आज जो आ रहा सैचरडे कमिंग सैचरडे शाम को 6:30 बजे तक लग के 8 बजे तक गुरद्वारा साहब विखे आ जाना, बाहर ट्रेलर है आपां तुहानूं गाइड भी कर देंगे, उहदे विच इह वर्कशॉप होनी है। सब नूं बेनती कर खासकर जिहड़े नौजवान बच्चे हैं उन्होंने इंग्लिश दे विच भी जवाब दिते जाणगे वो भी जरूर इस वर्कशॉप नूं अटेंड करन। ये बड़ी इनफॉर्मेटिव जिहड़ी इनफॉर्मेशन दे विच असीं एकत्र करके लियांदी है जो आप जी नाल सांझी करनी है कि आनंद कारज है कि ते असीं कर की रहे हाँ। सो इहदे वास्ते 26 तरीक नूं जरूर आप जी ने हाजरियां भरनियां। तो इस तों अलावा दूसरी वर्कशॉप फिर जुलाई के महीने में 11 जुलाई जिहड़ा उस तों अगला सैचरडे आना है उहदे विच इस तरह रखी गई शाम नूं 6:30 बजे तों लग के 8 बजे तक, क्योंकि असी इस स्टेज तो समझाते करते रोज़ की रोज़ जां विआह शादियां जो टाइम हुंदा खुशी का टाइम हुंदा उदों जदों असी इस तरह दी गल्लां करते हाँ तो लंबा समा लग जाता है। हुण ये वक्खरा प्रोग्राम जो है असी ये जो तय किया इहदे विच जरूर आप जी ने आके जानकारी बड़ी जानकारी भरपूर यह वर्कशॉप होगी, ये जरूर तुसी आउणा ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 26 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ 6:30 ਤੋਂ 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਕੁ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ 11:50 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਲਾਰ ਉਦੈ।

जित छुटै परानी, हर हर नाम जप अमृत बानी। रहाओ कोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारे कछु ना जाता।

सजना तू दुनिया नू लाइट देना रोशनी देना तू बड़ा कुछ देखता ते कुछ जानना है तू एक गल दस मेरे वर्गा प्यार किसे कोल हैगा जिद्दां दा मेरे कोल प्यार है अपने प्यार दी कहानी सुनाउंदा एक दिन दीवे नू कहा पतंगड़े ने साडे जिहा कोई आशिक जहान है नहीं एक दिन दीवे नू कहा पतंगड़े ने साडे जिहा कोई आशिक जहान है नहीं हर कोई मरन तो त्रास त्रास करदा पर साडे वांग कोई वारदा जान है नहीं साडी कौम वर्गी इस कौम अगे मर के मिटन वाला अहम ध्यान है नहीं ओए दसी बाज लियाज दे दीविया ओए होर जग ते प्राण नभाए किस किस खातर अपने यार दी दस मैनू जिउंदे अपने तन जलाए किस किस जिउंदे अपने तन जलाए किस गुरु प्यारियो बहुत सोहना सवाल कीता भई दस कोई दुनिया दे उत्ते है जिहड़ा इश्क दी खातर अपने प्यार दी खातर अपने प्यारे दे प्यार विच इन्ना रुझ जावे इन्ना गंभीर हो जावे कि अपना तन तक सड़वा लवे तू है दस सकदा कोई ते अगो दीवे ने सवाल कीता दीवे ने उस सवाल का जवाब दिता है दीवे आख्या ऐडा ना मान कर तू हुण गुरु प्यारे जो कोई होर दुनिया का बंदा हुंदा ना इस सवाल का जवाब ना दे सकदा है इस पतंगे का सवाल का की जवाब दे सकते सी वो कौन है दुनिया के उत्ते जिहड़ा प्यार दी खातर अपने आप नूं कुर्बान करवे अपने खंभ सड़वा लवे पर दीवे आखिया ऐडा ना माण कर तू ऐडा आ ना धार हंकार अंदर ओए सरताज शहीदां दा नहीं सुनिया पंचम पिता मशहूर संसार अंदर ओ खुशी नाल बैठा लोहा सड़दियां ते मारी चौंकड़ी याद करता रे अंदर तत्ती रेत कड़छे नाल सीस पैंदी ओ भी सड़दा ही किसे प्यारे अंदर ओ भी सड़दा ही किसे प्यारे अंदर।

अंदर सृष्टि बजी हुई है, जमीन ते आसमान, ये तीन लोग तेरे हुक्म दे विच ने, ते यारा आ की पाणा वरता दिता। सतसंग जी सतगुर तत्ती तवी दे उत्ते बैठे, उत्तों भी कहरां दी अग वरती है, गर्मी मौसमी गर्मी, लो तत्ती है थले अग बलदी है, और गुरु प्यारे किते महसूस करके देखो। धन गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी दे उत्ते बैठे ने, शरीर दा मस बदन दा मास उस तत्ती तवी दे उत्ते पिघल पिघल के पै रहा, चर्बी पिघल पिघल के पै रही है, एक अतर फलेर वर्गी सुगंधी आउंदी है, हड्डियां नंगियां हो गईयां अग दे सेक दे नाल, हड्डियां नंगियां हो गई, लत्तां तो भी शरीर दियां सारियां हड्डियां भी गुरदेव पातशाह दियां नंगियां हो गई। वो कितना दी रूह होगी, हजे भी जीती है, हजे भी समाधि ला के बैठी है, ते उन्हां दा पुराना मित्र साईं मियां मीर आउंदा ते देख के भुब मार के रो गया, कहिंदा सतगुरु मैनू हुक्म देवो, मैं दिल्ली ते लाहौर नूं आपस विच भेड़ के खत्म कर देना चाहुंदा, मैं ये जुलम होर नहीं देखना चाहुंदा। सतगुर कहिंदे साईं जी रब दे बंदियां नूं खुदा दे बंदियां नूं गुस्से थोड़ा होना चाहिए, संत ते निम्रता दा धार नहीं हुंदा, तुसी खुदा दे बंदे हो, तुहाडे मूंह आ गल चंगी नहीं लगती। गुरु प्यारियो एक बार सवाल हुण गुरदेव पातशाह कहिंदे असी कोई नवा काम नहीं करते, साईं जी तुसी सानू एक सवाल कीता सी कोई समा पहला याद होवेगा, और असी ते उस सवाल का जवाब दे रहे हां, ते साईं मियां मीर भले दिल ना पुछदे गुरदेव पातशाह तुसी केड़ा मैं सवाल तुहानू कर दिता कि तुहानू तत्ती तवी दे उत्ते बैठना पै गया उस सवाल का जवाब देने वास्ते। सतगुरु मुस्कुरा के कहिंदे साईं जी याद करो, तुसी एक बार आख्या कि गुरदेव पातशाह और गुरबाणी दियां कुछ तुकां मैं पढ़ रहा, यह मैनू तसली नहीं हो रही, यह कहण वास्ते ही है जां इन्हां ते अमल भी किया जा सकता है? कहिंदे केड़ियां महाराज? कहिंदे तुसी कदी आख्या सी कि तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, कितें अग दे विच सड़िया थोड़ो जा सकता? चलो ये कहण दियां गल्लां, इदां महाराज हो सकता है? ते उदों गुरदेव पातशाह कोई शांत हो गए, कहिंदे साईं जी समा आउण ते तेरियां इस गुरबाणी दी तुक दा ना असी कदे जवाब देवांगे, पर अज नहीं दिता जा सकता। ते अज गुरदेव पातशाह कहिंदे तक ला साईं जी तक ला, कदी तू जवाब मंगिया सी अज तैनू जवाब दे रहे हां, हां अपना तन मन कट के भी उस यार नू मनाया जा सकता है, पर अपना एक प्राणा दी उहूती देनी पई। गुरु प्यारे साईं मियां मीर जी तो रिहा ना गया इन्ना जुल्म, और चाहते गुरु प्यारे एकदम जे चाहते ना ये सब कुछ जिन्हां ने तसीहे दिते सी उत्थे खत्म कर सकते सी, सब नूं इन्नी पावर सी साईं मियां मीर विच, इन्नी राजनीतिक पावर रखते सी, पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उन्हां नूं शांत रहने वास्ते कहता, तो साईं मियां मीर जी इत्थों चले गए। उबलदी देग विच बालिया तत्ती तवी दे उत्ते गुरदेव पातशाह नूं साड़ के देख लिया, महाराज ईन नहीं मन्ने, ते हुण इन्हां ने सोचिया भी एदू कोई होर भी तसीहा हुंदा, भी होर भी कोई एदू वड्डा जुल्म कर सकदे इन्हां दे उत्ते, भी होर इन्हां दे शरीर नूं तकलीफ दित्ती जा सके। ते किसे ने आखिया, कहिंदे असीं सुणिया, किसे ने आखिया भी असीं सुणिया है भाई सड़े हुए शरीर दे उत्ते सड़े हुए थां दे उत्ते कहिंदे जे ठंडा पानी पाया जावे ना वह उन्हूं उदों भी वध जलन हुंदी है, पहला नालों भी वध साड़ पैंदा है। ते गुरु प्यारियो ये फिर होर गुरदेव पातशाह दे शरीर नूं साड़ देण वास्ते होर तसीहे देण वास्ते ये जालम रावी दे कंढे दे उत्ते लै आउंदे। हुण कई वार कई साडे सज्जण कह दिंदे हुंदे सी भाई गुरदेव पातशाह ने आप रावी विच इशनान करन दा फैसला लिया, नहीं गुरु प्यारियो कितें बंदी खाने विच कोई कैदी भी अपना फैसला सुना सकता मैं नहाउणा चाहुंदा नहीं, फिर जे ओह आखे भी तो उहदा कदी हुक्म मन्निया जांदा नहीं मन्निया जांदा। यह गुरदेव पातशाह नूं एक वक्खरा तसीहा देण दा इन्हां दा एक तरीका सी कि रावी दे ठंडे पानी दे विच इन्हां नूं डोबीए और इन्हां दे शरीर नूं होर तकलीफ होवे। ते सतसंग जी गुरदेव पातशाह नूं रावी दे कंढे दे उत्ते लै गए, जदों उन्हां दे पावन शरीर नूं रावी दे विच पाया ना सड़िया होया शरीर गुरदेव पातशाह दा

गुरु प्यारियो, मोमन खान ने इस बड़े हट्टे कट्टे जरनैल नूं वंगारिया, इहदा नां सी तकी बेग। और सतसंगत जी, ये दसां दसां वीहां वीहां ते भारू होण वाला, ये जंग दे फैसले बदलण वाला, संजो दे विच मड़िया होया और अपने आप दे विच बड़ा वीर बहादुर कहिंदा कहौंदा। जदों मोमन खान ने देखिया बई 2000 दे विचों 200-250 बंदा मेरा मारिया गया ते हजे कोई जित वाली गल नजर नहीं आती, बहुत सारे जख्मी हो गया, ते फिर हुण अपने सारे जरनैलों दे विचों तकी बेग नूं मोमन खां कहिंदा, कहिंदा खान साहब तैनू अगे होना पैना। भाई तारा सिंह वां दे नाल दो हथ कर, भाई तारा सिंह शहीद हो गया, मारिया गया, तो सारा खेल अपने हाथ दे विच हो जावेगी। सो यार प्यारियो, ये संजो दे विच मड़िया होया अपने आप नूं कहिंदा कहौंदा, या अली अल्लाह अकबर दे मार के नारे, ते भाई तारा सिंह नूं वंगारदा होया अगे वधदा। एक दूजे दे उत्तों दूर तीरां दे वार करदे ने, और उस वेले खालसे दे कोल सब तो मारू हथियार जिहड़ा ना वह तीर कमान हुंदा सी, ते तीर कमान दे विच गुरु का खालसा बहुत तेज बड़ा फरतीला हुंदा सी। ते सतसंगत जी, इधर यह तकी बेग यह भी तीरां दे वार करदा है, यह भी अगे वधदा है, ते इधर भाई तारा सिंह तीरां दे वार करदा, एक दूजे दियां वारां नूं ढालां दे उत्ते रोकदे रोकदे बिल्कुल एक दूजे दे नेड़े आ जांदे आ, हुण हत्थों पाई लड़ना चाहुंदे आ। दोवें बड़े बहादुर ने, एक सिख फौजां दा जरनैल ते दूसरा मुगल फौजां दा जरनैल, आपस विच आमो सामने हो गए। सतसंगत जी, इधर भाई तारा सिंह वार करदा है ते तकी वा तकी बेग वार रोकदा है। हुण भाई तारा सिंह वार करे कित्थे, सारा शरीर इहदा लोहे दे नाल मड़िया होया, तलवार तो दूरों पैंदा है, जे नेड़े जांदा है भाई तारा सिंह नेड़े जांदा है, ते इह नेड़े हो के तलवार दा वार कर सकदा सी और सिंह दा नुकसान कर सकदा सी, और आप ही लोहे दे संजो दे नाल मड़िया, इहदे किते भी ना तीर लगदा है ना तलवार लगदी है। हुण ओ गुरु का सूरमा भाई तारा सिंह इको ही जगह देखता, कहिंदा एक जगह है, ओ सी इहदा मूंह सिर्फ जिथे संजो तो बगैर सी, केवल इहदा मूंह सी। हुण भाई तारा सिंह उस अकाल पुरख नूं कलगियां वाले पातशाह नूं त्या के हाथ दे विच फड़ के नेजा, ते इहदे मूंह विच नेजा धक्क दिंदा है, जख्मी कर दिंदा है, पिछे नूं भजदा है। जख्मी होया तकी बेग पिछे नूं भज्जा आउंदा है, ते मोमन खां सारा कुछ अपने अखां दे नाल देख रिहा सी, इहनां दा वड्डा जरनैल जिहड़ा सी, इहदे जबाड़े दे विचों खून वग रिहा, ते मोमन खां ने इहनूं मजाक दे नाल आखिया, हुण मूंह दे विचों खून वगदा, अगला फटड़ होया ते इहनां दा बंदा मजाक करदा है, कहिंदा तकी बेग पान चबा रिहा, कहिंदा मूंह दे विचों खून वग रिहा सी, कहिंदा पान चबा रिहा, ते उन्ने भी अगे गुस्से विच आख्या, कहिंदा हां पान चबा रिहा, उधर तारा सिंह वंडदा फिरदा जो भी चाह के लै आवे। जख्मी होया कुछ समय बाद, ये अपने जख्मां दी पीड़ा ना झलदा होया इत्थे ही वा पिंड दे विच मर जांदा है। सो गुरु प्यारियो, फिर इस तों अगे ये फौजां आपस विच घमसान इन्ना ज्यादा वध्या, हुण मोमन खान जल्दी तो जल्दी फैसला करना चाहुंदा सी भी जे जंग लंबी हो गई, यह गुरु के खालसे इन्होंने इत्थे पिड़ मल्लिया होया, इन्होंने मोर्चे बनाए हुए ने, यह मोर्चियां च बैठे वार कर रहे ने, इन्हां दे मोर्चियां दे उत्ते कब्जे करके हल्ला करके जल्दी तो जल्दी इन्हां दे उत्ते फतेह पाउणी चाहीदी है, नहीं तो मेरा बहुत वड्डा नुकसान हो सकता है। सो गुरु प्यारे, बहुत सारिया होर फौजां जख्मी कृपा के मरवा के, ते इह अपने भतीजे मरीद खान, इहदा भतीजा सी मरीद खान, उन्हूं फिर कहिंदा, कहिंदा भतीजा तेरे ते माण रह गया, तकी बेग वड्डा जरनैल सी वह जख्मी हो गया, हुण एक तेरे ते माण है, तू आ मेरा खून, भतीजा सी ना, कहिंदा तू मेरा खून है,
ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਸਜਣਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਰੀਦ ਖਾਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੇੜ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਸ ਮਰੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣੋ।

0: सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहया।
1: सोदर रागा सा महला पहला।